जीवन एक ऐसी किताब है जिसका हर दिन एक नया पन्ना होता है। बीते हुए पन्नों में कुछ अच्छी यादें होंगी, कुछ गलतियां होंगी और कुछ अधूरे ख्वाब और ऐसी बातें भी होंगी जिन्हें याद करके आज भी मन भावुक हो जाता होगा। लेकिन क्या हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते? नहीं, हाँ हम उसे सीख जरूर सकते हैं और अपने आने वाले कल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

दोस्तों, सुबह की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हमारे आसपास प्रेम और अपनापन होता है। आपने गौर किया होगा कि किसी अपने का एक छोटा सा वाक्य भी हमारा पूरा दिन अच्छा बना दे सकता है। घर से निकलते समय किसी का ये कहना कि अपना ख्याल रखना, किसी मित्र का हाल पूछना या किसी सहकर्मी की मुस्कान, ये छोटी छोटी बातें हमारे मन में कितनी सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं। किसी को धन्यवाद दीजिए, किसी की सराहना कीजिए, वाकई आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।

0: हमारी प्रकृति कितनी सहज शिक्षक है। पेड़ हमें सिखाते हैं कि फल लगने पर भी झुके रहना चाहिए। नदियाँ सिखाती हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहना जरूरी है। सूरज सिखाता है कि हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठो, और फूल सिखाते हैं कि अपने छोटे से जीवन में भी दूसरों को खुशबू देते रहो। हम भी अपने जीवन में देने की भावना रखें तो जीवन कितना बेहतरीन हो जाएगा।
1: मैंने

और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले आपके लिए एक छोटी सी पंक्ति। सुबह की धूप आपके आंगन में उतरती रहे, उम्मीद की लौ आपके मन में जलती रहे, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, आपके कदमों में आगे बढ़ने की शक्ति बनी रहे। इस संदेश के साथ मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति कार्यक्रम भोर सुहानी के साथ। अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెడ్స్ 2 o'clock సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరి కాసేపట్లో హిందీలో అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాత్ మై మనోజ్. भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा. बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए. नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है. जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है. अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है. सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल

पाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर

0: सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली PV सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। सिंधु का महिला सिंगल्स में सामना ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Odisha, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. The appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "This historic meeting underscores our shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats." He said, "Through decisive coordination, we remain committed to building a safer, stronger, and more secure BIMSTEC region." The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, or BIMSTEC, is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian nations. The BIMSTEC member states are India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. Besides discussing organized crime, combating terrorism, narcotic smuggling, the Home Ministers meet is expected to take note of disaster and energy security issues. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Tayyaba LET commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to infiltrate into Poonch district yesterday. The deceased terrorists have been identified as top LET commander Mohammad Faizan, Mohammad Ishtiaq, Mohammad Waqas and Mohammad Asim. All of them were residents of Mandala, Madarpur and Hazira Tehsil of POJK's Poonch district. The group of terrorists was trying to sneak across the LOC in the Nangi Tekri area of Krishnaghati sector when they triggered a mine. The powerful blast killed all 4 terrorists on the spot. The exact explosion site is in the Satwa Naki Nangi Tekri area, which is a traditionally known infiltration path used by cross-border operatives trying to sneak into Indian territory. The center has announced to set up a high-level committee within a week to address the grievances of sugarcane farmers from Maharashtra and Karnataka. This was decided after Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan and Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi.

विजुअल्स आते हैं ना, लेकिन सिक्किम का फूड और क्विजिन्स भी कुछ कम नहीं है. द स्टेट हैज अ प्लेथोर ऑफ माउथ वाटरिंग डिशेस टू ऑफर. चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ऑब्वियस की, मोमोस. स्टीम डंपलिंग्स जिनमें वेजिटेबल्स या मीट के फिलिंग्स होते हैं और साथ में स्पाइसी चटनी. एंड देन वी हैव द स्क्रम्पशियस तुक्पा, नूडल से बना एक गर्मा गर्म सूप. इट्स लाइक हैविंग नूडल्स एंड ब्रॉथ टुगेदर एट द सेम टाइम. सिक्किम की क्विजीन पर नेपाली, भूटिया और लेपचा कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है. इमेजिन सिटिंग इन अ स्मॉल केव इन सिक्किम, रिलिशिंग अ स्टीम बॉल ऑफ तुक्पा वाइल एंजॉइंग द व्यू ऑफ मिस्ट रोलिंग ओवर द हिल्स. वाव. सो सिक्किम इज इन जस्ट अ फीस्ट फॉर द आइस, इट्स अ डेस्टिनेशन फॉर योर टेस्ट बड्स टू. और मैं एक शब्द भी आगे नहीं बोलूंगा बिकॉज इट विल इंक्रीज माई क्रेविंग्स फॉर मोमोज एंड तुपका. तो चलिए अब म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी

0: नहीं, इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो। और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह अपने आप में एक बड़ी क्षमता है, लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए।

0: సెబీ వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబీ ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబీ సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: तो आप सुना है जिंदगी एक सफर है सुहाना फ्रॉम अंदाज एंड कई के पान बना रसवाला फ्रॉम डॉन. किशोर कुमार का एक खास बात यह है कि ही कुड ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी टू एवरी सॉन्ग ही सैंग. राजेश खन्ना के लिए उनकी रोमांटिक वॉइस, अमिताभ बच्चन के लिए उनकी एनर्जेटिक अंदाज और देवानंद के लिए उनका वो प्लेफुल चार्म. हर एक एक्टर के गाने में उनका एक हर एक एक्टर के गाने में उनकी एक अलग और यूनिक फ्लेवर का सिंगिंग होता था और उनकी योडलिंग जिसके लिए उन्हों मशहूर है वो तो उनकी पहचान बन चुकी है. जिंदगी एक सफ़र है सुहाना आज भी सुने तो चेहरे पे एक हल्का सा मुस्कुराहट आ जाता है. पर किशोरदा की स्पेशलिटी ये है कि वो आपको एक पल में हंसा सकता है और अगले ही पल में एक इमोशनल गाने से रुला भी सकता है. तो चलिए हम किशोर कुमार साहब का और एक गाने की तरफ बढ़ेंगे.

0: FM Rainbow 101.9.
1: तो किशोरदा के दो बैक टू बैक मजेदार गाने, प्यार में है तो किशोर कुमार, दिल टूटा है तो किशोर कुमार. इट्स अमेजिंग हाउ वन वॉइस कैन एक्सप्रेस टू ऑपोजिट इमोशंस सो ब्यूटिफुली. पदगुंगरू अगर आप देख लिया तो इट्स ऑलमोस्ट अ वेरी एक्सपेरिमेंटल, ऑलमोस्ट अ मोनोलॉग काइंड ऑफ अ सॉन्ग. एंड देन यू हैव पल पल दिल, जिसमें प्यार का एक सुकून है, और मेरे सपनों की रानी में रोमांस और एक्साइटमेंट है, चिंगारी को जो भड़काए में जिंदगी का दर्द है. किशोरदा के गाने सिर्फ लिरिक्स और मेलोडी नहीं थे, दे मेड यू फील समथिंग. कभी किसी की याद दिलाई, तो कभी जिंदगी में जो ऐसी मोमेंट है जो आप भूलना चाहते हो पर नहीं भूल सकते. उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका शायद यही है कि आप और मैं उनके गाने सुने, उनसे जुड़ी हुई यादें ताज़े करें, एंड लेट द म्यूजिक स्पीक फॉर इट्सेल्फ. सो नाउ आई लेट द म्यूजिक स्पीक फॉर इट्सेल्फ.

आपने अपनी लाइफ टाइम में कितने प्लान्स प्लान करे हो? एक, दो या ज्यादा से ज्यादा 5 और 10, राइट? नाउ इमेजिन समवन डेडिकेटिंग देयर एंटायर लाइफ, एक आदमी जो सालों भर से ट्रीज प्लान कर रहे हैं और दूसरों को भी प्लान करने के लिए एंकरेज कर रहा है। दैट्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ दार्लापल्ली रामय्या, द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना। वॉट मेक्स हिज जर्नी इज इंट हिज लव फॉर ट्रीज बट हिज कंसिस्टेंसी। एक सैपलिंग के लिए केयर, पेशेंस और टाइम चाहिए बिफोर इट ग्रोस इन टू अ ट्री जो बड़े होके काफी लोगों को साया देती है। टू समवन हु मे नेवर इवन नो हु प्लांटेड इट एंड इज इन दैट ब्यूटिफुल, डूइंग समथिंग गुड फॉर पीपल हु यू विल प्रॉबली नेवर मीट। नाउ दैट्स अ लेगेसी वर्थ सेलिब्रेटिंग।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं और अब पेश खिदमत है आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

सामिन, क्या आप जानते हैं कि आफात के खतरात में कमी का आलमी दिन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि आफात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी करना कितना ज़रूरी है। सोचिए, अगर किसी इलाके में सैलाब का खतरा हो और लोगों को पहले ही इत्तला मिल जाए, अगर किसी इमारत में आग लगने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता मालूम हो, या अगर जलजले के वक्त महफूज रहने के तरीकों की तरबियत हासिल हो, तो बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकती। यही आगाही इस दिन का असल अहमियत है। तो सामीन, मालूमात के सिलसिले को यहीं आगे बढ़ाते हुए अब जरा मौसीकी का रंग भी जमाते हैं। आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा, आरजे मशकूर अहमद के साथ आकाशवाणी हैदराबाद पर हाजिर है अगला गीत।

समीन, जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हालात हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। कुदरती आफात भी ऐसी ही आजमाइशें हैं जिनके बाद बहुत से लोग अपने घर, अपना सामान और कभी अपने प्यारों को भी खो देते हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में उम्मीद, हिम्मत और दूसरों का तआवुन इंसान को दोबारा खड़ा होने का हौसला देता है। हमने अक्सर देखा है कि आफात के बाद लोग एक दूसरे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं, जख्मियों की मदद करते हैं और मुतासिरा खानदानों की जिंदगी दोबारा शुरू करने में उनका साथ देते हैं। यही जज्बा हमें सिखाता है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा रास्ता दिखा सकती है। इसी उम्मीद और हौसले के साथ आइए मौसीकी के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं मशकूर अहमद आपके साथ हूं आकाशवाणी हैदराबाद के प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जामे। अब समाप्त कीजिए एक खूबसूरत गीत।

सामीन कहते हैं कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये बात आफात के दौरान बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो इमदादी सरगर्मियां ज्यादा मुआसिर हो जाती हैं। कोई मुतासिर अफराद तक खाना पहुंचाता है, तो कोई तिब्बी इमदाद फराहम करता है, और कोई लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि इमदादी काम तरबियत याफ्ता अफराद की रहनुमाई में किए जाएं, खतरनाक मकामात से दूर रहा जाए और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल किया जाए। इत्तेहाद का मतलब सिर्फ इकट्ठा होना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे का सहारा बनना भी है। सामीन, इसी इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे के साथ अब बढ़ते हैं एक खूबसूरत गीत की तरफ। ये है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz, और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा मशकूर अहमद के साथ।

0: किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहने नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ये शेर बहन भाई के पाकीज़ा मोहब्बत भरे रिश्ते और बहन की शफ़क़त की अहमियत को उजागर करता है। बहन सिर्फ खुशियों में शरीक नहीं होती, बल्कि भाई के दुख और तकलीफ में भी मरहम बनकर साथ खड़ी होती है। बहन अल्लाह की अता की हुई एक खूबसूरत नेमत है, उसके साथ मोहब्बत, इज्जत और खुलूस से पेश आना चाहिए। बहन की मौजूदगी को मामूली न समझें, उसके दुख में शरीक हों, उसकी खुशियों का ख्याल रखें और उसे हमेशा तहफ्फुज और एहतराम का एहसास दें। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, मोहब्बत, ख्याल और वफादारी से मजबूत होते हैं।
1: तो समीन, अभी आपने पयाम शब जनाब जैदी साहब की आवाज में समात फरमाया। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान मशकूर अहमद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और तवज्जो का बेहद शुक्रिया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और हेडलाइंस के साथ में है राजेश लेक।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस गेन ओवर 1.5%, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 1,100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,700। Prime Minister Narendra Modi condemns weaponization of global interconnectedness, positions India as a dependable ally. International Monetary Fund raises India's GDP growth forecast to 7% for current financial year. And UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक का उछाल, सेंसेक्स में 1100 अंकों से ज्यादा की बढ़त, निफ्टी 22,700 से ऊपर बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परस्पर संबद्धता के दुरुपयोग की निंदा की, भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर यूपीआई एमडीआर दीपावली के बाद लागू होगा।
0: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा के लाभ में रहा, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक

0: marginal gain of 0.1%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एचसीएल टेक में 8.3% का उछाल आया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6.6% ऊपर आ गया और टेक महिंद्रा में 4.9% की वृद्धि हुई. वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में 0.9% की गिरावट आई और मारुति तथा एटर्नल में 0.6% की सुस्ती देखी गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, focused IT surged over 5%, IT climbed 4.9%, and realty advanced 2.5%. In contrast, hospitals and healthcare dropped 0.2% each. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,415 companies advanced, 1,957 declined and 219 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर एस पी शर्मा, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आज जो हमने बाजार में उछाल देखा तो इसको हम किन परिणामों की वजह मान सकते हैं, खासतौर पे इसे विदेशी निवेशकों का कोई एक नया टर्न माने या फिर वैश्विक परिस्थितियों पर का जो असर है वो हम पर ज्यादा दिख रहा है या कुछ अन्य कारण है इसके?
2: देखिए, इसके कई कारण हैं जो सभी कारणों ने मिलकर मार्केट को एक अच्छा सर्ज दिया, एक अच्छा उछाल दिया. सबसे पहले तो जो एक वैल्यू बाइंग होती है, जो मार्केट में हमने पिछले काफी दिनों में डिसेलरेशन देखी कि मार्केट ऐसे स्तर पे आ गए जहाँ पे एक वैल्यू स्टॉक्स बनते हैं जो हम आने वाले टाइम में जिनमें हम एक मुनाफा देख सकते हैं. तो उस लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है वो आकर्षित होता है कि हम मार्केट में एंटर करें. और दूसरा, जो रोबस्ट अर्निंग्स रही आईटी सेक्टर की, आईटी कंपनीज की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी एक मेजर सपोर्ट मिली है. और तीसरा, कुछ ऐसे कारण है कि जो कैपिटल गेन से कुछ रिलीफ हो सकता है मिले इन्वेस्टर को एक बहुत, वो भी एक कारण है. और चौथे पे जो रूपी एक एप्रिशिएट हुआ, रूपी में एक एकदम से रीबाउंड करना 50 बेसिस पॉइंट एक बहुत बड़ी रिलीफ है रूपी के लिए. वो काफी दिनों से डिसेलरेशन हम देख रहे थे. तो कुल मिला के एक सेंटीमेंट जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, तो उससे चौतरफा जो एक रिकवरी के मूड में मार्केट आई और मार्केट ने सुबह मार्केट खुलते ही काफी जबरदस्त रिबाउंड दिखाया है. तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट में एक ऐसी जो एक नेगेटिव माहौल था. और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ के ऊपर काफी सुदृढ़ता जताई है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जताया है, इंक्रीज किया है ग्रोथ को. तो ये भी साथ में एक फैक्टर जो है सपोर्टिव फैक्टर रहा है.
1: बड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप भी एक ही ट्रैक में हमें चलते हुए दिखाई दिए. हालांकि बीते दिनों में यह हो रहा था कि जिस ट्रैक पर लार्ज कैप जा रहे थे उस पर शायद स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं पहुंच पा रहे थे, आज सभी एक ही ट्रैक पर चलते दिखाई दिए. तो ये घरेलू निवेशकों का इंटरेस्ट हमें दिखा रहा है ज्यादा या इस पर भी वही सारे कारण लागू होते हैं जो आपने बताए?
2: देखिए, इसके ऊपर वही कारण है जो हमने डिस्कस किए हैं कि जब चौतरफा रैली आती है तो सभी में, चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स हों, सभी एक ही दिशा में फिर हमें दौड़ते हुए दिखाई दिए हैं क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. एक तो आईएमएफ ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, भले ही एक कल के जो नंबर्स थे, कल इन्फ्लेशन का जो डेटा आया वो फेवरेबल नहीं था और मार्केट्स में कुछ काफी हलचल देखी गई, मतलब करेक्शन थी, तो लेकिन ना उतना ही आज रीबाउंड बहुत स्ट्रांग था जो ये फैक्टर सपोर्टिव फैक्टर बने. मतलब कुल मिला के जो अगर हम देखें इसको कंपोजिट में, तो पॉजिटिव्स ज्यादा है और नेगेटिव्स थोड़े रह गए पीछे.
0: यू मेंशन अबाउट यस्टरडेज डिक्लाइन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट. हैव दोज प्रेशर्स ईज्ड और पॉज्ड फॉर सम टाइम? What should we be expecting? Yesterday was pretty low. Today we are on a high terrain. So what should now in the coming days we should expect?
2: I don't think those pressures are subsides or eased. But today's

0: sentiment is higher than those negative sentiments. So the today's developments are dominating those a few negative headwinds which are happening at the global level. But the rise of rupee and the robust IT earnings and IMF, the confidence on India's economy, and some expectations for the tax relief, all these factors were higher or supportive or largely supportive as compared with the some laggards of like the inflation and the
1: global So Dr. Sharma, does this indicate that the market believes that inflation and interest rate concerns are becoming less severe?
0: Because these are temporary. Actually, these are the repercussions or the results of the West Asia crisis. Mm. That's why crude oil prices are going up, because the global growth is decelerating. Demand is not that much high at the global level, but still crude oil prices in the higher side because of the West Asia or the supply side concerns. So that's why the interest rate are going up, because of the crude oil prices and the inflation trajectory becoming problematic. Mm. So these factors are temporary. As and when there is some peace at the global level between Iran and US, then the crude prices will fall drastically, and the inflation will also come in the realistic zone, and the interest rate also will become rational. So there will not be any increase if the prices are coming down, the inflation becomes stable once again.
1: You mentioned about the IT led the market today with nearly a 5% gain. What is driving the renewed interest in technology stocks?
0: Because India's competitive advantage in IT sector is very strong, still existing at the global level, because we are very strong or competitive in the with the global players, and that's why our companies are gaining more. Though there are headwinds, but our IT sector is very resilient sector at the global level and showing the good results and numbers.
1: So today, FMCG and auto also participated in the rally. How important will festival season, the festive season demand be for these sectors in the coming weeks?
0: Yes, IT, as IT is a major driver, IT stocks when are going up, and that creates an overall growth trajectory of the economy, and demand also happening, because the IT earnings also support many other sectors like the real estate sector and the FMCG, because demand is increased in the economy because of the earnings of the IT players or the IT employees also. So that's why I believe this rally becomes more strong when the IT gung-ho happens in the economy.
2: SP, थोड़ा सा अगर तुलना करें पिछले महीने की और इस महीने की, तो हमने देखा पिछले महीने गिरावट का एक बड़ा रुख नजर आया था, लेकिन अक्टूबर में अभी तक मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है. हालांकि वैश्विक परिस्थितियां तमाम हमें अगर ओवरऑल देखते हैं तो उसी तरह से नजर आ रही है. मैं आपसे गहराई से पूछना चाहता हूँ, इसमें DIS की क्या भूमिका है?
0: देखिए, इसमें DIS की बहुत स्ट्रांग भूमिका है, जैसे बिकॉज FII तो आपने देखा कि बहुत ही वॉलेटाइल
2: जी, बहुत निकासी हो रही है,
0: आज इधर हैं तो कल कहीं और दिखेंगे. तो लेकिन DIIs ने मार्केट को जो सपोर्ट किया, DIIs का जो कॉन्फिडेंस है, DIIs का जो इकोनॉमी के ऊपर एक जो रवैया,
2: भरोसा
0: जिसको हम कहते हैं, उसी से रिटेलर का भरोसा भी बनता है. तो ये दोनों ऐसी सेगमेंट्स हैं, रिटेलर्स का तो ट्रांजैक्शन काफी हाई है और DIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी हाई है, तो दोनों ही काफी अच्छा सपोर्ट जो है मार्केट को देते हैं. तो मैं समझता हूँ कि जो पीछे हमने देखा कुछ महीने पहले जो डिसेलरेशन का एक मोड था, जो अब फिर वो डिसेलरेशन डीप हुई, फिर रिकवरी हुई, फिर उसके बाद करेक्शन आई, फिर रिकवरी हुई, तो ऐसा दौर कई बार चला. तो अभी का ये जो दौर है, अभी मार्केट एक ऐसे स्तर पे आ गई है जहाँ पे मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, मार्केट की में एक वैल्यू बाइंग आती है. जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में हमें 2-3 साल का लोअर स्तर मिल रहा है तो हमें इसमें एंटर कर जाना चाहिए, जबकि कारण कुछ और है. कारण हमारे ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ खामी है या फिर हमारी कंपनीज के नतीजे गलत हैं या फिर वो ग्रो नहीं कर पा रही हैं. कारण है इसके जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो एक हेडविंड्स हैं, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है पिछले काफ़ी महीनों से, जो एक एस्केलेशन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो ट्रांसमिट हो रही है इन्फ्लेशन में, पहले WPI में, CPI में. तो कारण इसके ग्लोबल है, कारण इसके हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल नहीं है. डोमेस्टिक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग. आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखिए, आप IIP के नंबर्स देखिए, आप कोर इंफ्रा के नंबर कुछ भी आप देखिए, तो एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव.
2: अभी जिस तरह से IMF ने आंकड़े, मतलब जो ये बात कही कि GDP हमारी 7%

0: बढ़ोतरी की बात की, ये विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा?
1: जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी लार्ज इकोनॉमी नहीं है जो 7% पे ग्रो कर रही हो. आप देखिए चाइना का ग्रोथ जो है IMF ने 4.5% बताया है, मच मच बिलो एज कम्पेयर्ड विद इंडिया. इंडिया 7% है और मैं समझता हूँ कि 7 से ऊपर ही रहेगा. अगर आप पिछले 5 वर्षों का डेटा देखेंगे 21-22 से लेकर 25-26 तक का, तो एवरेज ग्रोथ जो इंडिया का बनता है वो 7.5% से ऊपर है. जो उन्हीं कंट्री से, उन इकोनॉमी से, चाइना से, यूएसए से, कहीं कहीं मतलब डबल ट्रिपल है. आप ग्लोबल ग्रोथ को देखिए 3.1%, उससे डबल रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं
0: जी.
1: तो भरोसा बनना तो लाजमी है. जो FIIs का भरोसा बनना या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी भारत की इकोनॉमी में, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनका तो कॉन्फिडेंस बनना स्वाभाविक है. जब
0: जी.
1: जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो IMF इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एट 7%, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर the economy and for the people.
2: Okay. Moving on, Prime Minister Narendra Modi today said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Mr. Modi said that India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said India's GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India's foreign exchange reserves exceed $700 billion and the banking system is in its strongest position in many decades.
3: साथियों, 21st century का ये decade अभूतपूर्व global challenges लेकर आया है. हम अगर पिछले 6 वर्षों को देखें, हमने global pandemic देखी, फिर अलग-अलग regions में युद्ध छिड़ गए, जैसे इतना ही काफी नहीं था. जिन चीजों ने कभी दुनिया को जोड़ा था वही आज वेपन बन रहे. सप्लाई चेन्स हो, एनर्जी हो, मिनरल्स हो, पेमेंट्स हो या टेक्नोलॉजी, ये दबाव और दबदबे का माध्यम बन रहे हैं. बीते दशकों में ग्लोबलाइजेशन ने जो रूट्स बनाए वो कब और कहां चौक पॉइंट्स बन गए, ये हम सब देख रहे हैं.
2: The Prime Minister also positioned India as a dependable ally, offering a radically different cooperative approach to global relations. Mr. Modi said that India does not grow at anyone's cost. He said that India grows with the world and for the world. Apart from that, Dr. Sharma, what the Prime Minister mentioned was also India's reforms. They continue to move India ahead at a high speed. What do you have to say about that? And second thing is about India being the home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world.
1: जी बिल्कुल लेख साहब, दिस इज आई बिलीव अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन दैट इंडिया सपोर्ट सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग, रिफॉर्म्स आर प्रोग्रेसिंग एंड सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. सो आई वुड से देर आर 4 मेजर पिलर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ विच आर सपोर्टिंग द ग्रोथ. Firstly, the stable policy environment, which we call the reforms express. Reforms are happening each day. One reforms is implemented, then the second also comes to support the first. So this chain is continue since the last many years, particularly from the pandemic years when we supported the economy with many reforms, reforms for the farmers, reforms for the MSMEs, reforms for the NBFCs, reforms for the citizens, laborers. So these reforms are progressing and providing a great support to the economy. So this is the first pillar. And second is the trajectory of the middle class. Middle class is growing significantly as 25 crore people are pulled from poverty to the middle class, lower middle class, or more lower middle class is now entering.
2: So the consumption story is quite
1: class.
2: Strong.
1: Yes, consumption story is becoming more and more robust and strong to support this growth trajectory, which is happening 7.8% or more than 7% during the last many years. And third is the export competitiveness. We are becoming more and more strong at the global level. Our competitiveness is increasing. We are making new numbers in our exports every year. Last year we posted $863 billion. So now current year we have a target of $1 trillion. So this is again a strong pillar of the economic growth trajectory.

0: And fourth is the ease of doing business, which is happening for the businesses to expand their production possibility frontiers. Reforms are happening, compliances are becoming simple, GST is now becoming simple. So these four pillars are becoming a strong support for the overall economic growth trajectory of the country.
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ी हुई घरेलू मांग और बेहतर सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक बढ़ोतरी को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण इन अनुमानों में सुधार किया गया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया गया था। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि 0.3% बढ़ाकर 7% कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा तथा आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। एसपी, कई सारी बातें इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ी है, एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर इसको समझने की हम कोशिश करें तो आईएमएफ को ऐसा क्या नजर आया भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी वजह से आईएमएफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि भारत की घरेलू उत्पादन वृद्धि दर इतनी होगी?
0: देखिए, आईएमएफ के जो ऑब्जर्वेशन है, खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले चार पिलर्स बताए हैं, तो कंजम्पशन एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए, और सेकेंड जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही बड़ी हैंड होल्डिंग हमारी ग्रोथ को
1: कारोबार करने में आसानी
0: होना, तभी तो हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं, हमारे एमएसएमईज ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो जो जो, जो हमारे सेक्टोरल डेवलपमेंट्स है, लाइक द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो या फिर और बहुत सारे जो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो मैनुफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट अच्छा आ रहा है। लगभग कोई 10% के आसपास का अभी हमने जो फर्स्ट क्वार्टर में देखा तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, 9% के भी ऊपर है, और पिछले साल भी 9.9% था। तो कुल मिला के जो ये फैक्टर्स हैं, ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्राजेक्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और खास करके जो चैलेंजेस, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए चैलेंज, उनके लिए फिस्कल चैलेंज एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और एक आने वाले टाइम में उनको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है, इन्फ्लेशन उनके कई, जैसे यूएस का इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इज स्टिकी एट द हायर लेवल, लेकिन ग्रोथ डिसेलिरेट हो रही है और डेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी, और चाइना में ग्रोथ जो है 4.5% पे आ गई है। तो कुल मिला के जो भारत की लीडरशिप है, जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो असल में ही सराहनीय है कि हम इतने हेडविंड्स के बावजूद भी हम इस लेवल पे ग्रो कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। एमडीआर के संबंध में अगली सूचना समय आने पर अलग से दी जाएगी। और इस बीच सभी उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ निशुल्क यूपीआई लेनदेन करते रहेंगे। एमडीआर शुल्क अगले आदेश के बाद केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी भी लेनदेन पर लागू होगा। आंकड़ों के अनुसार लगभग 96% ग्राहक से व्यापारी यूपीआई लेनदेन इससे अप्रभावित रहेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को भी पहले की तरह लेनदेन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। एसपी, इस तरह की खबर आना हमारे पास कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट में ये दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, हालांकि पहले से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति से व्यापारी के बीच में होना 2,000 रुपए से अधिक का लेन देन उस पर ही होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें मैं समझता हूँ क्योंकि त्योहारों के सीजन में जो डिमांड है काफी हाई रहती है, तो इसमें क्योंकि एक नई प्रणाली सामने आ रही है, तो ये डिसीजन अच्छा है कि जो कोई नई चीज है उसको हम एक नॉर्मल जब सिनेरियो होगा उसमें इम्प्लीमेंट करें, तो उसको समझने में लोगों को आसानी रहेगी। अब क्योंकि जो फेस्टिव डिमांड में सबसे ज्यादा यही 1-3-4 महीने होते हैं जहां पे जो शुरू होती है, रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक बहुत ही एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, तो क्योंकि ये एक नई प्रणाली है तो इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी काफी फेवरेबल रहेगा।
1: एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5.5% नीचे आ गया। जापान का निक्केई 225 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। एसपी में कुछ देर पहले आईटी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एशियाई बाजार जो कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून इन किया है गीत मेरे मनमीत और आज के गीत मेरे मनमीत में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। 11:41 हो चुके हैं तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज के साथ। संगीतबद्ध गीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है खून भरी मांग। और इस गीत के बाद अगला गीत जो आप सुनेंगे वो होगा माचिस फिल्म से विशाल भारद्वाज का, इसमें संगीत है और जो बोल है गीत के वो गुलजार ने लिखे हैं, आवाज है लता मंगेशकर की। बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद ले आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज गीत मेरे मनमीत में।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड सॉन्ग।

0: 101.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। जो गीत अब आप सुनेंगे वो है किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गीत होगा, और इसके जो संगीत है वो संगीतबद्ध किया है पप्पी लहरी साहब ने। और इस गीत के साथ ही आप अर्पना को देंगे इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर होंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।
1: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक गणराज्य रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

नूरी फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात का अपना ही एक अंदाज है, अपनी ही एक रवानी, और जब इस रात के सफर में साथ जुड़ जाते हैं पुराने फिल्मी गीत तो हर लम्हा कुछ खास हो जाता है। कभी कोई धुन पुरानी यादों के दरवाजे खोलती है तो कभी कोई नगमा दिल को सुकून दे जाता है। तो आइए चांदनी रात और सुरीली धुनों के साथ शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का ये खूबसूरत सा सफर।

कभी किसी का आना दिल में ऐसी हलचल मचा देता है कि लगता है जैसे हम ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गए हों। एक अनजानी सी खुशी, दिल में उतनी मीठी सी उमंग और प्यार का मदहोश कर देने वाला एहसास। सवेरे वाली गाड़ी फिल्म का गाना आपने सुना, सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ राखी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।

प्यार में किए गए वादे और खाई गई कस्में अक्सर दिल को एक मीठी उलझन में डाल देते हैं। क्या वादा है, क्या कसम है और इस रिश्ते का नाम क्या है? ये सवाल भले ही समझ ना आए लेकिन दिल की धड़कन सब कुछ बयान कर देती है। टैक्सी चोर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया पप्पी लाहिड़ी ने।

कहते हैं प्यार जब दिल पर दस्तक देता है तो दुनिया का हर रंग कुछ और ही खूबसूरत लगने लगता है। धड़कनों में एक नई रवानी, आंखों में मीठे मीठे सपने और होठों पर बस एक ही नाम रहता है। इश्क के इसी शोख, चंचल और मदहोश कर देने वाले एहसास को अभी आपने सुना फिल्म कुदरत के इस गीत को। लता मंगेशकर ने गाया, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

कभी कभी मन उदासियों से घिरकर किसी ऐसी जगह जाने को करता है जहां दिल को सुकून मिले और जिंदगी कुछ नई सी लगे, जहां न बीते कल की परछाइयां हों न अधूरे ख्वाबों का बोझ। एक ऐसी मंजिल की तलाश जहां मन को अपना ठिकाना मिल सके। मान अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना येशुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

अंधा कानून फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर

में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर दियारा इलाके में गंगा नदी में नाव पलटने पर 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों को बचा लिया गया है। मृतकों में ज्यादातर नाबालिग हैं जो भोज में शामिल होने जाने जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर दूतावास के नए एआई अवतार देवी की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति, पर्यटन, छात्रवृत्ति, व्यापार, निवेश के अवसरों और वाणिज्य दूतावास से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा एआई देवी भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी से जुड़ी खबरें और जानकारियां भी साझा करेगी। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। वहीं तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को जर्मनी की जवान ली ने 13-21, 25-23, 21-19 से हराया। वहीं तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदायरा को 21-17, 16-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उनका मुकाबला जवान ली से होगा। भारत के पुरुष डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जबकि महिला डबल्स में तीसा जौली और गायत्री गोपीचंद खेलेंगी। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 5 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहानी, मैं हूं राखी आपके साथ।